करिया, बिखना करिया, अब साधु संग परिया, हर द्वारे खरिया, दर्शन करिया।

प्रभ चांद दीपक बन तारिका मंडल मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शबद वाजंत पेरी रहाओ सैस तव नैन नैन है तोहे को सैस मूरत नना एक तोही सैस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सैस तव गंध इव चलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए तिस दै चानन सब मैं चानन होए गोर साखी जोत प्रगट होए जो तिस पावै सो आरती होए हर चरण कवल मक

वेत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उच्चार अंग संग भगवान प्रसन्न प्रव नानक पत तुदार देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उच्चार अंग संग भगवान परसन प्रभु नानक पत तुदार वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

ते है अभे है अजीत है अभीत है त्रमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अपर्ण है अगंज है अभंज है अचूत है अचंज है अमीक है रफीक है अंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजह है अनंत है महंत है अलीक है नृसरीक है निर्लंब है निर्लंब है

अभेदियनम अकाम समस्तो पराजी समस्ता सताम तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं पुजंग पर्यात शांद अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूप नमो सर्वमान्य समस्त निदान नमस्तवं नरे नाथ नमस्तवं परमार्थ नमस्तवं अगंजी नमस्तवं अपंजी नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राय राजे नमो सासा जे नमो सासा हे नमो महमा हे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो परम सर्वपीतं नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृत्सं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो दिवजीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदारिद सिद्धं निवासी चरपड़ शांद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे चल भोगे चल राजे अटल साजे अखल धर्म अलख कर्म सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राण सर्वं त्राण सर्वं भोगता सर्वं जोगता सर्वं देवं सर्वं पेवं

आततुत प्रचंड मितगत्या खंडो आलिस्या कर्म अदृश्या धर्म सर्वापना डियंडन बढ़िया चाचरी छंद त्वे प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं रे नाम्य कामे पुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्रो चक्रवासे चत्रो चक्र मानिया चत्रो चक्र दानिया चाचरी छंद न सत्रय न मित्रय न परम न पित्रय न कर्म न काय जन न जाय न चित्रय न मित्रय प्रे है पवित्रय प्रति सैदि सैदृ सैकृ सै भगवती छंद त्वे प्रसाद कहते ब्रह्म स्वरूप है कि अन

निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रभा है, सुजुक्त सुधा है, सदैव स्वरूप है, अभेदी अनूप है, समस्त उपराज है, सदा सरसाज है, समस्त सलाम है, सदैव अकाम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओहंगाध रूप है, अनाथ स्वरूप है, अनंगी अनामी त्रिभंगी त्रिकामी त्रिवर्ग त्रिबाध्य अगंजे अगाध्य सुभंग सर्वभाग्य सुसर्वानुरागे त्रिभुवता स्वरूप है, छिद है, छूत है, किनर्कम प्रणास है, पृथ्वी प्रवास है, निरुक्त प्रवाह है, सदैव सदा है, विभुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रवाह है, अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, चाचरी छंद अपंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, अपरम है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अतूत है, अनास है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अदिख है, अलेख है, अपेख है, अटह है, अगह है, असम है, अगम है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चर प्रशंत है, प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग हंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग करता सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग कर्म सर्वंग धर्म सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता ऋषावल छंद त्वय प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाथे सदा सर्वस्वाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे स्रवंगी अनूपे न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते न साकं श्री कह मितो अमी कह सदैव प्रवाह है अजय है अजा है भगवती शंत है प्रसाद कि जा हरजूर है कि हाजिर हजूर है हमें सुलो सलाम है समस्त कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसन चिराग है कि काम लकरीम है कि राज करीम है कि रोजी देहांद है कि राज कर हिंद है करीम उल कमाल है कि हुसन उल जमाल है गनीम उल खिराज है गरीब उल निवास है हरीफ उल सिकन है हिरास उल फिकन है कलंकम प्रणास है समस्त उल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करीम है समस्त उल जबा है कि साहिब किरा है कि नरकम प्रणास है बहिष्ट उल निवास है कि सर्व उल गबन है हमें सुलर बन है तमाम मुल्तमीज है समस्त अजीज है परम परमीश है समस्त अदीश है आदे सुलो लेख है हमे सुलो अपेख है जमीन उल जमा है आमी कुले माँ है करीम उल कमाल है के जुरत जमाल है के चलम प्रकाश है के मितो सुबास है के अजब स्वरूप है के मितो विभूत है के मितो पसा है के आत्म प्रवाह है के अचलंग अनंग है के मितो अपंग है मद पार छंद त्वय प्रसाद

उपमापार जपनितोदार जलथलमंडो दिश्वसपण जलथलमहं दिश्वस्मियंतन पवनास्त्रतरतुरास्वाजान बाहुए कैसदा वंकारवाद कतनियनाद खलखंड घ्याल गुरबरे अकाल कर कर प्रणाम चित्चन्ना मन छिजगात अजिजना बातन चंजगातन रंजबातन टुट पंडारन ठट पार अडीठ धर्मत ठीठ कर्म अण ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वे प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है मैं मंडन है जगतेश रहे परमेश्वर है कल कारण है सर्वोबारण है तृत के तन है जग के कर्ण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वंकर है सर्वपाशी है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से खलखंड से।

कृत है धरणी धृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजवा कृत है अमृता अमृत है निर्णायक है खलकायक है विश्वंभर है करुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पंजन है अर्गंजन है रे पतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्मबस है जस के जस है पुजंग पर्यात छन्द नमो सूर्य सूर्य।

नमुरा सुनताम सुनसात रूपे नमो परम तत्तं अतत्तं स्वरूपे नमो जोग जोग्य नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादम विभूते कलंकर रूपे अलंकर अलंके नमो आशासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अच्छरी शांत

चौक भाई संबत 1766 पणिजय 868 फोन 3 के हिजय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सुतद्रव ग्रंथ सुधारा सोइया पाई गहे जपते तुमरे तपते को आकरे नैया न्योराम नहीं पुराण पुराण अनेक है मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बपेद कह हम एक न जानियो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो है बखानियो दोहरा

मनहु क्यो विसारियै विड़दाता, जे अगन महे आहार पहुंचावे उसनु के पोहे न सकी, जिसनौ

प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, गुण गावो रंग रता रहाओ, सतगुर नाम निधान दृढ़ाया, चिंता सगल बिनासी कर कृपा अपनो कर लीना, मन बसया अबिनासी, ताको बिघन न को लागे, जो सतगुर अपने राखे, चरण

हर पाया प्रवे अविनाशी, हर प्रभ ठाकुर का जिरचाया, तन हृदय नाम विगासी।

बहुत प्रभ चरण अंतर जामे प्रभ कारण करण राख लिए अपनी कृपा तार पांच दूत पागे बिकराल जुए जन्मना कबू हार नान।

सात सास सास संते प्रित पाल संत का दोखी राज ते टाल संत की निंदा करो ना कोए जो निंदे तिसका पतन होए जिसको राखे सिर

नारायण सेव सगल फल पाए, नारायण मन माहे अदार, नारायण बहुत संसार, नारायण कहत जम पाग पलायन, नारायण दंत पाने डाइन, नारायण साध साधबक सिंध, नारायण कीने सुख आनंद, नारायण प्रगट किन्नो परताप, नारायण संत।

तीत ना इस दुश्मन ना इस मीत ना इस हरक नहीं इस सोग सब कुछ इसका एहो करने जोग ना इस बाप नहीं इस माया एहो अपरंपर होता आया पाप पुन का इस लेप ना लागे कट कट अंतर।

ऐसा पाए अवमानी की जड़ सर पर जाए। नितरिया सतगुर तर तेरी कर कृपा राखो जन केरी। कौन नानक

संत मिले कुछ सुनिए कहिए, सां मिले असंत मस्त कर रहिए, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रब रहिए राव, संत स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी, बोलत बोलत बड़े बेकारा, बिन बोले क्या करे बेचारा, कहो कबीर शूशा घट बोले

आकाश गगन पताल गगन है, चौ दिस गगन रहाई ले। आनंद मोल सदा परखोतम, कट बिन से गगन ना जाई ले। मोहे बिराग पयो, एहो जी आए कहां गयो रहो। पंच तत् मिल काया कीनी, तत् कहां ते कीन रही। कर्म बंध तुम जियो कहत हो, कर मैं जिनको दीन रे। हर मैं तन है, तन में हर है, सर्ब निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे। राग गौंड वाणी कबीर जियो की कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पूजा बांध पिला कर डार्यो, हस्ती क्रोप मुंड मैं मार्यो। हस भाग कै चीसा मारे, या मूरत कै हों बलिहारी। आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर, काजी बकबो हसदी तोर। रहाओ रे महाबत तुझ डारो काट, इसे तो रहबो कालो साठ। हस्तन तोरे तरे त्यान, वांके हृदय बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर को दीना। कुंचर पोट ले ले नमस्कारे, बूझी नहीं काजी अंधियारे। तीन बार पतिया पर लीना, मन कठोर जूना पतिना। कह कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद में जन की जिंद। गौंड ना इहो मानस ना इहो देहो, ना इहो जति कहा वैसे हो। ना इहो जोगी ना अवदूता, ना इस माए न काहू पूता। या मंदर में कौन बसाई, ता कांत ना को उपाई। रहाओ ना इहो गिरही ना उदासी, ना इहो राज ना पीख मंगासी। ना इस पिंड न रख तू राती, ना इहो ब्राह्मण ना इहो खाती। ना इहो तपा कहा वै सेख, ना इहो जीवे ना मरता देख। इस मरते को जे को रोवे, जो रोवे सोई पत खोवे। गुर प्रसाद मैं डगरो पाया, जीवन मरन दो मिटवाया। कौ कबीर हो राम की अंस, जस कागद पर मिटे न मांस। गौंड टूटे तागे निखुट्टी पान, द्वारी उपर चिलकावे कान। कूच बिचारे फूए फाल, या मुंडिया सिर चढ़ बोहकाल। इहो मुंडिया सगलो द्रब खोई, आवत जात नाक सर होई। रहाओ तुरी नार की छोड़ी बाता, राम नाम बांका मन राता। लरकी लरकन खैबू नाही, मुंडियान दिन ता पै जाए। एक दोए मंदर एक दोए बाट, हमको साथर उनको खाट। मूंड पलोस कमर वद पोती, हमको चावन उनको रोटी। मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बूढ़त की टेक। सोनी अंदली लोई बेपीर, इन मुंडियन भज सरन कबीर। गौंड खसम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा औरो होवे। रखवारे का होए विनाश, आगे नरकी हां भोग विलास। एक सुहागण जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी। रहाओ सुहागण गल सोहे हार, संत को विख विगसे संसार। कर श्रृंगार बहे पखियारी, ओह पिंड परायण। कर श्रृंगार बहे पखियारी, संत की ठिठकी फिरे बिचारी। संत भाग ओह पाछे परे, गुर प्रसादी मारो डरे। साकत की ओह पिंड परायण, हमको दृष्ट परे त्रिक डायण। हम तिसका बो जान्या पिहो, जब हुए कृपाल मेरे गुरुदेव। कौ कबीर अब बाहर परी, संसारे के अंचल लरी। गौंड ग्रह सो बाजा के रे नाही, आवत पैया कूदे जाए। वांके अंतर नहीं संतोख, बिन सुहागण लागे दोख। तन सुहागण महापवीत।

सात निमक में सात गुर बुद्ध सिख लाई। नर ते उपज स्वर्ग को जीत्यो सो अवगत अवखद मैं पाई। जहां जहां तू नारद टेके नैक टिकाबो मोहे। तेरे नाम अभिलंब बहुत जन उदरे नामे की निज मत ए गौंड।

भेट तला कलखाया, जैसे बिखे हेत पर नारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी, जैसे तापते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन वापरो नामा, राग गौंड वाणी नाम दियो जियो की घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर करत मिटे सब परम हर को नाम लै उत्तम धर्म, हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंदले की लाकनी, हरे नम सते हरे नमे हर हर करत नहीं दुख जमे रहाओ, हर हर नाक्स हरे प्राण अजय मल की ओ बैकुंठे थान, सो अपनावत गन का तरी सो हर नैणो की पुत्री, हर हर करत पूत ना तरी बाल कातनी कपटे भरी, सिमरन द्रौपद सोती उदरी गौतम सती सिला निसतरी, केसी कंस मथन जिन किया जी दान काली को दिया, प्राण वे नामाय सो हरी जास जपत पै आपता टरी, गौंड पैरों पूत सीतला तावे खर बहन उशार उढ़ावे, हो तो एक रमैया लेहो आन देव बदला बन दे हो रहो।

मेरे मन सतगुर सेब सुखोई, जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख न व्यापे कोई राओ। काचे पांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया तुर करते, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया प्रभ अपना, एहो आवण जाना, जिन दिया सो चित न आवे, मोए अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपारा, भगत करी हर के गुण गावा, नानक दास तुम्हारा। राम कली महला पंजमा, पवो चरना तलियो परिया, वो ऐसी सेव कमावो, आपस ते ऊपर सब जानो, तो धर्गे सुख पावो। संतो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोलो गुरमुख वाणी रहो। परपंच छोड़ सहज कर, वैसो झूठा कहो न कोई, सतगुर मिलो नवे निद पावो, इन विद तत् बिलोई। परम चुकावो गुरमुख लिवलावो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर, किस स्यों करो बुराई। सतगुर मिलिए मार्ग मुक्ता, सहजे मिले स्वामी, धन धन से जन जिनी, कल मैं हर पाया, जन नानक सद कुरबानी। राम कली महला पंजमा, आवत हरख न जावत दुखा, नै ब्यापे मन रोगनी, सदा नंद गुर पूरा पाया, तो उतरी सगल वियोगनी। ए विद है मन जोगनी, मोह रोग मोह सोग, रोग लोग ना व्यापे, तै हर हर हर रस भोगनी रहाओ। स्वर्ग पवित्र अमृत पवित्रा, प्याल पवित्र लोगनी, आज्ञा करी सदा सुख पुंचे, जत कत देख पेखो हर गुणी। नै शिव शक्ति जल नहीं पवना, तय कार नहीं मेदनी, सतगुर योग का तहां निवासा, जय अविगत नाथ अगम तनी। तन मन हर का, तन सब हर का, हर के गुण हो क्या गणी। कौ नानक हम तुम गुर खोई है, अबे हम मिलोगनी। राम कली महला पंजमा, त्रै गुण रहत रहे निरारी, साधक सिद्ध न जानी। रतन कोठरी अमृत संपूर्ण, सतगुर के खजाने। आचार्य किश कह न जाई, वस्त गोचर पाई रहाओ। मोल नहीं कुछ करने जोगा, क्या को कहे सुनावे, कथन कहन को सोजी नाही, जो पेखे तिस बणियावे। सोई जाने करने हारा, कीता क्या बेचारा, अपनी गत मिते आपे जाने, हरे आपे पूर भंडारा। ऐसा रस अमृत मन चाख्या, तृप्त रहे अघाई, कौ नानक मेरी आसा पूरी, सतगुर की शरण आई। राम कली महला पंजमा, अंगीकार किया प्रभ अपने, बैरी सगले साधे, जिन बैरी है ये जग लूटिया, ते बैरी लै बाधे। सतगुर परमेश्वर मेरा, अनक राज भोग रस माणी, नाउ जपी परवासा तेरा रहाओ। चेतना बस दूजी बाता, सिरियो पर रखवारा, बेपरवार रहत है स्वामी, क नाम है आधारा। पूरन होए मिलियो सुखदाई, ऊन न काई बाता, तत् सार परम पद पाया, छोड़ न कतू जाता। वरन साको जैसा तू है, साचे अलख पारा, अतल अथा अडोल स्वामी, नानक खसम हमारा। राम कली महला पंजमा, तू दाना तू अब चल, तू ही जात मेरी पाती, तू डोल कदे डोले नाही, ता हम कैसी ताती। एक तू ही एक तू राया, तो कृपा ते सुख पाया रहाओ। तू सागर हम हंस तुम्हारे, तुम मैं माणक लाला, तुम देवो तित तिल संक न मानो, हम पहुँचे सदा निहाला। हम बालक तुम पिता हमारे, तुम मुख देवो खीरा, हम खेले सब लाड लडावे, तुम सदगुणी गहीरा। तुम पूरन पूर रहे संपूरन, हम भी संग घाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहा, नानक कहन न जाए। राम कली महला पंजमा,
कर कर ताल पखावच नैनो माथे बजे रबाबा करनो मधवासरी वाजे जेवा तुण अगाजा नृत करे कर मनुआ नाचे आने को कर साजा राम को नृत करी पेखे पेखण हार दयाला जेता साज शिंगारी रहो अखार मंडली तारन सवाई ऊपर गगन चंदोआ पवन विचोला करते केला जलते ओपत होआ पंच तत् कर पुत्रा कीनी किरत मिलावा होआ चंद सूरज जो चरे चरागा चौकट पीतर राखे दस पातो पंच सगीता एके पीतर साते पेन पेन होए पाव दिखावे सबो निरारी पाखे कर कर निरत होवे दिन राती कट कट बांजे तोरा एक नचावे एक पवावे एक आए जाए होए तोरा कौन नानक सो बहर न नाचे जिस गुर पेटे पूरा राम कली महला पंजमा ओंकार एक तुन एक है एके राग लापे एका देसी एक दिखावे एको रहया व्यापे एका सुरते काही सेवा एको गुरते जापे पलो पलो रे कीर्तनिया राम रमा रामा गुण गाओ छोड़ माया के तंद सुहाओ रहो पंच विजेतर करे संतो का सात सुरा ले चाले वाजा मान तान तज ताना पाओ न भीगा कहले फेरी फेर न होवे कभी एक शब्द बंद पाले नारदी नर हर आण जान दूरे कुंगर खड़क त्याग बिसोरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो निरतकारी जन्म नावे जे को अपने ठाकुर पावे कोट माध्यो कीर्तन गावे साध संगत की जहां वो टेक कौ नानक तिस कीर्तन एक राम कली महला।

भगत जना के मन विश्राम रहो प्रभ के सिमरन गर्भ न बसै प्रभ के सिमरन दुख जमन सै।

सिमर सिमर सदा सुख पाओ पवन सह पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित घर जाए बसै बिनासी कौ नानक काटी जम फासी।